0: The World at Night on your local station, Plenty Valley FM.
1: If you can understand when I start Punjabi vich bolna, ta tusi Victoria Police vich naukri karan layi, os ton vi vad yog ho, jinna tusi sochde ho. Vadiya shuruati tankha naal shuru karo, ati naukri dauran duji paashan di varto karke patte kamao. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Station sponsor.
3: ये flu का मौसम है, तो से की चुनोगे? अपने बच्चे दे टीका करण दी booking ले पहला योजना बनाऊंगे, जा उस दी देखभाल ले बढ़िया योजना मार रद्द करूंगे? ओ बच्चा जिस दी बांह विच दर्द है, जा फेफड़ियां विच infection वाला बच्चा, होन थोड़ी जही बेअरामी, जा बाद विच बहुत ज्यादा दर्द, flu होन दा जोखम ना लो, सालाना flu दा टीका लगवा के अपने परिवार दी सुरक्षा करण दी चुन करो। 5 साल तो घट उम्र के बच्चों